का कातिल इन असूलों की है खुद से जान ली। हाँ जी तू जानती है क्यों नाम तेरा जानता नहीं जानना हूँ चाहता लेकिन पूछ नहीं पता शिट जानता नहीं क्यों ये प्यार था या मोह आई एम कंफ्यूज।